0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वरुणचुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज के शो की शुरुआत होगी फुटबॉल के उस पहलू से जो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है. माफ करिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच हम जानेंगे कि कैसे फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में लोगों को जोड़ने, समावेशन बढ़ाने और समुदायों को मजबूत करने का जरिया बन रहा है. इसके बाद सुनेंगे रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन के साथ खास बातचीत का दूसरा हिस्सा. कल के शो में हमने इस चर्चा का पहला भाग आपके लिए प्ले किया था और आज उसका दूसरा हिस्सा जो बाकी बातचीत है वो हम आपके लिए प्ले करेंगे. फिर एक रिपोर्ट उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ईवी अपनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या जानना जरूरी है, इस पर हम नजर डालेंगे. और अंत में भारत से एक प्रेरणादायक कहानी, बेंगलुरु के एक युवा ने अपने पेट डॉग को समय पर खून न मिलने के बाद एक ऐसी पहल शुरू की जो आज कई शहरों में पशुओं के लिए ब्लड डोनर्स को जोड़ने का काम कर रही है. उनकी सनों की मुहिम के बारे में जानेंगे की आखिरी रिपोर्ट में जो आपके लिए लेकर आएंगे फैसल फरीद. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी और ऐसी बात है गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज की खबरें, आज की ताजा खबरें न्यूज फ्लैश में. मंगलवार 16 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने यूनाइटेड किंगडम की सराहना की है. यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वो इस प्रतिबंध को और आगे बढ़ाएगा ताकि बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. YouTube, Snapchat और Meta, जो Facebook और Instagram की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इसका युवाओं पर उल्टा असर पड़ेगा. इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी कार्रवाई करेंगे जहां बच्चों को अनजान लोगों से बातचीत करने की सुविधा मिलती है. ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी ACTU ने उन टैक्स रिफॉर्म्स का समर्थन किया है जो अभी सेनेट इंक्वायरी का विषय है. लेबर सरकार द्वारा कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग पॉलिसी में किए गए बदलाव एक बिल का हिस्सा है जिस पर आलोचकों का कहना है कि इसे बिना पर्याप्त जांच के संसद से जल्दबाजी में पारित किया गया. ACTU के असिस्टेंट सेक्रेटरी जोसेफ मिशेल ने कहा है कि ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स को फायदा मिल रहा था जबकि फर्स्ट होम बायर्स को नुकसान हो रहा था. मिडिल ईस्ट में कई महीनों से चल रहे युद्ध के कारण बढ़ती इन्फ्लेशन के बीच सरकार पीस डील के अर्थव्यवस्था पर असर देखने का इंतजार कर रही है. इन्फ्लेशन अभी भी RBA के

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
3: को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोका जाना उनकी प्राथमिकता है. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीडिया अपीयरेंस में अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील पहले ही साइन हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी. ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नेवल पैसेज के लिए किसी टोल की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने बातचीत से जुड़े आगे के विवरण पर कुछ भी बताने से इंकार किया है. G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन में फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं. वहीं इसी समिट में गेस्ट नेशंस के तौर पर ब्राजील, इजिप्ट, इंडिया, कीनिया, साउथ कोरिया, खतर, यूक्रेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं. और अब खबर भारत से. भारत ने डीजल और एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्सेस में बढ़ोतरी की है, जबकि पेट्रोल पर ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी बयान के अनुसार डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 13.5 रुपए था. वहीं ATF यानी एविएशन टर्बिन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 9.5 रुपए से बढ़ाकर 12.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है. ये नई दरें 16 जून से शुरू होने वाली अगले 15 दिन की अवधि के लिए लागू होंगी. पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह 1.5 रुपए प्रति लीटर ही बनी रहेगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्तेमाल यानी डोमेस्टिक यूज के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ. अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर. हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi. न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की पहली रिपोर्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछ लेते हैं आज का सवाल. आज का सवाल एक्चुअली पर्सनली जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे था और मैंने मेलबर्न से एडिलेड की एक रोड ट्रिप की, जिसमें कई छोटे छोटे शहरों पर रुक के कई खूबसूरत जगहें देखी और रियलाइज़ किया कि मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े बड़े रौनक भरे चकाचौंध शहरों में तो एक अलग मज़ा है, लेकिन जो आपके रीजनल एरिया ऑस्ट्रेलिया में उनकी भी बड़ी यूनिकनेस है. और इसका एक बहुत अच्छा खूबसूरत मुझे एग्जांपल मिला माउंट गैम्बियर में, जो बिल्कुल मेलबर्न और एडिलेड के बीच में पड़ता है और बड़ी वॉल्केनिक कहानी है इसके पीछे, कैसे वहां कुछ लेक्स बने. तो सवाल आज का यह है कि आप बताइए कि आपका फेवरेट रीजनल इलाका या फिर कोई भी ऐसे छोटा इलाका ऑस्ट्रेलिया में जो आप घूमे हो और आपको बड़ा पसंद आया है और हमारी ट्रैवल लिस्ट में होना चाहिए, वो क्या है. 04397997667 हमारा नंबर है. आज अपना नाम जरूर लिखिएगा, जगह का नाम जरूर लिखिएगा जहां शायद आप घूमने गए हों या घूमने जाना चाहते हों. 04397997667 आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. तब तक हम पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं. ये रिपोर्ट है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने फुटबॉल को एक बार फिर सुर्खियां में लाया है, लेकिन खेल के मैदान से परे फुटबॉल लोगों को जोड़ने, समावेशन बढ़ाने और समुदायों को मजबूत बनाने का भी माध्यम बन रहा है. प्रवासी समुदायों से लेकर स्थानीय क्लबों तक ये खेल अपनेपन और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे रहा है. इसी विषय पर ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रही हैं भव्या पांडे.
4: दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया में एक बार फिर फुटबॉल चर्चा के केंद्र में है. नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ. और फीफा विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए तुर्की को 2-1 से हराया है. कनाडा के वैनकूवर स्थित बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में युवा खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के भविष्य को लेकर भी नई उम्मीदें जगा दी हैं. इस जीत के सबसे बड़े नायकों में 20 वर्षीय नेस्टरी इराकुंडा रहे, जिन्होंने मैच के 27वें मिनट में शानदार गोल कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई. इसके साथ ही वे विश्व कप में गोल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.

0: हालांकि बड़े स्टेडियम की चमक और ग्लोबल हेडलाइन से दूर ये खेल कुछ शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीकों से समुदायों को जोड़ने, पहचान बनाने और सामाजिक एकता को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और पेशेवर फुटबॉलर जॉर्ज वीह के अनुसार फुटबॉल एक सार्वभौमिक भाषा है जो लोगों को उनकी राष्ट्रीयता, संस्कृति और विश्वास से परे जोड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया में यही विचार एक नई SBS ऑडियो सीरीज ब्यूटीफुल गेम चेंजर्स के जरिए सामने आ रहा है, जिसमें 12 ऐसी कहानियां शामिल हैं जहां लोग फुटबॉल के माध्यम से बदलाव ला रहे हैं। इनमें से एक कहानी लैबिन गुरुंग की है, जो 1990 के दशक के मध्य में नेपाल से छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी सिडनी में सागरमाथा फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की ताकि ऑस्ट्रेलिया में नए आए नेपाली समुदाय को जुड़ाव और अपनापन मिल सके।
1: We try to accommodate them. We help them in finding jobs. We try to keep them away from being lonely or being isolated from home. Through football, we try and reconnect them with the society.
0: समय के साथ इस क्लब ने समुदाय की एक गंभीर समस्या पर भी ध्यान देना शुरू किया, जुए की लत यानी गैम्बलिंग, खासकर नए आए पुरुषों में।
1: When we have someone who is suffering from a gambling problem in our club, we take it very seriously and we try to take it professionally as well. We try not to let other members know about his problem.
0: सिडनी के इनर वेस्ट में फुटबॉल ने पहचान और समुदाय को जोड़ने का भी काम किया है। 1985 में एलिसन टॉड और ट्रेसी एटकिंसन ने फ्लाइंग बैट्स फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की। वे बताती हैं कि इस क्लब की शुरुआत केवल फिट रहने की चाह से शुरू हुई थी।
2: We decided that we'd like to do some sort of activity to keep ourselves healthy. We thought about why don't we do soccer?
0: आज फ्लाइंग बैट्स को दुनिया का सबसे बड़ा LGBTQIA+ वुमेन्स और नॉन बाइनरी फुटबॉल क्लब माना जाता है। कुछ लोगों के लिए फुटबॉल पहचान और प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। अलीरा टोबी, जो क्वींसलैंड में इप्सविच के कानुलो और गानगुलू समुदाय की एक वर्गित महिला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उच्चतर पर फुटबॉल खेला है और अब नई पीढ़ी के लिए रास्ते बना रही हैं।
3: I think the closest thing for me was Kathy Freeman, which I mean probably sounds so cliche, but you know, I guess being an indigenous girl growing up, there wasn't many people that looked like me on television.
0: वर्तमान में वे जॉन मोरियार्टी फुटबॉल के साथ काम करती हैं, जहां हर हफ्ते लगभग 5,000 बच्चों के लिए फुटबॉल और वेलनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं।
3: If there's representation and there's opportunity and there's pathways, that really does open the door and change perspectives.
0: फुटबॉल शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज के लिए भी नई शुरुआत का जरिया बना है। सुलेमान जांडिनान, जो एक यजीदी रेफ्यूजी हैं और अब क्वींसलैंड की शीर्ष मेंस और वुमेन्स स्टेट लीग में रेफरी हैं, मात्र 12 वर्ष के थे जब उनके समुदाय पर आईसिस ने हमला किया था।
4: They destroyed everywhere. They killed thousands of people. They took me and 30 people from my family members.
0: ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उन्होंने फुटबॉल के जरिए एक नई दिशा पाई और अब वे अन्य शरणार्थी परिवारों की मदद करते हैं।
4: I want to show them that you have help. Like you can reach if you need help, and not just myself. There are many other people like me and better than me available and helping our community.
0: अफगान फुटबॉलर फातिमा यूसुफी, जो 2021 में काबुल से भागकर आई, अब अफगान वुमेन्स यूनाइटेड के लिए खेलती हैं।
5: We can give that hope for all those girls who are in Afghanistan and thinking like, you know, nothing will change, but there will be a hope, and that's our message always.
0: ये 5 कहानियाँ SBS ऑडियो की ब्यूटीफुल गेम चेंजर सीरीज से है, जो दर्शाती हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुड़ाव, पहचान और इन सब से आगे बदलाव का माध्यम है। इस पूरी सीरीज को देखने और सुनने के लिए sbs.com.au/beautifulgamechangers पर जाएं या SBS ऑन डिमांड पर देखें। इसके अलावा ताज़ा विश्व कप अपडेट्स के लिए SBS न्यूज हेडलाइंस सुनते रहें। SBS न्यूज के लिए साहिल मक्कर और पीटर थियोडोसियो की इस खबर को SBS हिंदी में आपके लिए लेकर आए हव्या पांडे।
6: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरा नाम है नबील और आज के शो में हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि बड़े शहरों की तो रौनक अपनी होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रीजनल एरियाज का भी जो यूनिकनेस है, जो खूबसूरती है, उसकी भी एक अलग बात होती है. और हाल ही में मुझे मौका मिला हॉर्शैम और माउंट गैम्बियर जैसी जगह देखने का. तो यही सवाल आपसे था कि आपको ऐसे कौन सी रीजनल एरिया बहुत पसंद है या आप देखना चाहते हैं. और हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं. क्यूरी लिखती हैं कि मुझे विक्टोरिया में बैलराट बहुत पसंद है. और एक और मैसेज आया है जिसमें ये लिखा गया है कि वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन विक्टोरिया इज ब्राइट. आई वॉज देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और वहाँ के जो पेड़ों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, और बड़ा ही खूबसूरत होता है. और एक ऑटम सीजन में इसको देखना तो बनता है. ये मैसेज हमें भेजा है राज मेहरा ने मेलबर्न से. तो आप भी बताइए 04397997667 पर कि आपको ऐसी कौन सी रीजनल एरिया पसंद है. और आई हैव बीन लकी कि कुछ समय ही हुआ मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव करके, लेकिन ब्राइट शायद वो पहली जगह थी राजी जहाँ पे मैं गया था. और बैलराट में एक्टिविटीज करने को बहुत है. तो आपके पास वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बैलराट में, और उसके अलावा भी सॉवरन हिल और क्रिस्टा कैसल और काफ़ी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं. तो 04397997667 हमारा नंबर है. आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा. मैं आपको मिलता हूँ इस एड ब्रेक के बाद. सुनते रहिए SBS हिंदी.
7: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: SBS Audio.
10: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
11: यही ज्यादा दिया. चुनते हाल में
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
16: Far from the partisan politics.
17: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रही हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
18: sbs.com.au/audio.
6: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरा नाम है नबील और अब आगे बढ़ते हैं हमारे शो की अगली रिपोर्ट की तरफ. कल आपने हमारे शो में सुना था नस्लीय भेदभाव आयुक्त यानी रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन के साथ बातचीत का पहला भाग. और आज हम आपके लिए उसी चर्चा का दूसरा भाग लेकर आए हैं जिसमें ऑनलाइन नफरत, गलत जानकारी और सामाजिक विभाजन जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है. आइए सुनते हैं प्रीति जब्बल की ये रिपोर्ट.
19: ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन के साथ मेरी बातचीत के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है. अब तक हमने बात की कि मार्च 2024 में ये जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा, खासकर ऐसे दौर में जब ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में काफी बहस और बदलाव देखने को मिले हैं. आज के सेगमेंट में हम ऑनलाइन हेट और मिस इन्फॉर्मेशन की बढ़ती चुनौती पर बात करेंगे जो माइग्रेंट और मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज, खासकर इंडियन कम्युनिटी को प्रभावित कर रही है. साथ ही जानेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कानून डिजिटल एज में रेसिज्म की बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं और सोशल कोहिजन यानी सामाजिक एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए और क्या किया जा सकता है. तो सुनिए अगला भाग. another area of racism that or misinformation targeting migrants and multicultural communities is a resurgence of keyboard warriors or online activism in Australia. Is Australia doing enough to tackle it? And what role should governments, tech platforms and everyday Australians be playing?

0: You are listening to SBS.
1: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
2: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
1: Probar la salsa.
2: ¡Ya no hay aguacate!
1: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
2: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces, se nos acabó el cilantro.
1: Se cayó una chalada.
3: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro, es Miracle Grow.
4: It does need to be, I think the law does need to be updated and to catch up to modern norms.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
1: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
2: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
1: Probar la salsa.
2: ¡Ya no hay aguacate!
1: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
2: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces, se nos acabó el cilantro.
1: Se cayó una chalada.
3: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro, es Miracle Grow.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: sbs.com.au/hindi ko apna online home banaiye. Taza tareen khabrein apni bhasha mein paiye. sbs.com.au/hindi par jaye. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
8: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया गाने का, लेकिन गाने से पहले एक मैसेज जो आया है वो पढ़ देते हैं. हमने सवाल पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी ऑफ बीट लोकेशन है या फिर कोई ऐसा रीजनल एरिया जो आपको बड़ा पसंद है घूमने में, और कई लोगों ने मैसेज किया कि ब्राइट है और बैलराट है. और एक नया मैसेज आया है रीता दुआ का डैंडेनोंग नॉर्थ से. वो कहती हैं कि आई लव टू गो टू ग्रैम्पियंस, आई लाइक द लुकआउट्स देयर. ये जगह है जो मैंने अभी तक देखी नहीं, लेकिन हाँ मन जरूर है और इसे भी लिस्ट में लिखा जाएगा. आप बताइए आपकी वो कौन सी फेवरेट रीजनल एरिया या ऑफ बीट लोकेशन है जो आप देख चुके हैं या देखना चाहेंगे. 04397997667 हमारा नंबर है और अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हो गया है गाने का. गाना सुनेंगे, वापस आएंगे कुछ रिपोर्ट और कुछ गाने. सुनते रहिए SBS हिंदी.

0: SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
4: 9767 हमारा नंबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं. अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए वो खरीदने से पहले, आइए जानते हैं वैशाली जैन की इस रिपोर्ट में.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: हैं तो बचत कुछ कम हो सकती है. इसकी वजह ये है कि सार्वजनिक चार्जरों पर प्रति किलोवाट घंटा बिजली की लागत आमतौर पर घर पर चार्ज करने की तुलना में अधिक होती है. तो फिर सवाल ये है कि मौजूदा बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज कितनी है और क्या ये रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है?
3: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
2: यदि आप किसी apartment में रहते हैं, तो आपको समर्पित ईवी चार्जर लगवाने के लिए अपनी स्ट्रेटा या बिल्डिंग प्रबंधन संस्था से अनुमति लेनी पड़ सकती है. हालांकि एलेक्स फॉरेस्ट का कहना है कि कई ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को घर के सामान्य बिजली सॉकेट में प्लग करके चार्ज करना ही पर्याप्त होता है.
4: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
2: ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापक उपयोग अभी दो दशक से भी कम समय से हो रहा है, इसलिए इनके सेकंड हैंड बाजार का विकास अभी शुरुआती दौर में है. फिर भी पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल किए गए ईवी के प्रति उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा है और उनकी रीसेल वैल्यू अब कई मामलों में पेट्रोल वाहनों के लगभग बराबर पहुँच गई है. और किसी भी नए वाहन की तरह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय बिक्री के बाद मिलने वाली सहायता यानी आफ्टर सेल्स सपोर्ट और सर्विसिंग सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें बैटरी की वारंटी की शर्तों की भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए. अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ईवी बाजार अब काफी प्रतिस्पर्धी हो गया है, यानी कॉम्पिटिटिव हो गया है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है. एलेक्स फॉरेस्ट इस पर आगे चर्चा करते हैं.
4: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
2: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इसंश को SBS न्यूज से आपके लिए प्रस्तुत किया ज़ोई थॉमडू और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने. इसंश में दी गई जानकारी सामान्य है, अपनी निजी परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
5: SBS हिंदी पर एक बार फिर वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हूं नबील और अभी आपने सुनी एक रिपोर्ट ईवी से जुड़ी. अगर आप भी कोई ईवी खरीदना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में उसके से जुड़ी कुछ जानकारियां थी, जो इसका पूरा पॉडकास्ट आप हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं sbs.com.au/hindi. और चलिए अब वक्त हो गया है एक गाने का. गाना सुनते हैं, फिर एड ब्रेक और एक आखिरी रिपोर्ट जिसमें फैसल फरीद आज फिर लेकर आएंगे एक प्रेरणादायक कहानी इंडिया से. बने रहिए SBS हिंदी पर.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
4: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
5: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
4: Probar la salsa.
5: ¡Ya no hay aguacate!
4: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
5: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato 2 veces. ¡Se nos acabó el cilantro! Se cayó una
6: charola. Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
7: SBS Hindi पर एक बार वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक आखिरी रिपोर्ट का वक्त हो गया है और उसके बाद एक गाने से अंत करेंगे प्रोग्राम. बेंगलुरु में एक छात्र आदित्य के पेट डॉग जिमी की खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई. इस घटना के बाद आदित्य ने पालतू जानवरों के लिए ब्लड डोनेशन की व्यवस्था बनाने का फैसला किया और bloodforpet.com नाम की वेबसाइट शुरू की. आइए जानते हैं इस पहलू के बारे में फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में.
8: रक्तदान महादान होता है, इससे किसी का जीवन बच सकता है. आमतौर पर लोग सामान्यतः रक्तदान किया करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर भी गौर किया है कि मनुष्यों की तरह जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली एवं अन्य जानवरों को भी रक्तदान की आवश्यकता होती है. अब इसका एक ही तरीका है कि लोग अपने पेट एनिमल से ब्लड डोनेट करवाएं. ऐसा होता है लेकिन बहुत कम. इसके प्रति शायद इतनी जागरूकता नहीं है. सुविधाएं हैं लेकिन अभी उस स्तर पर लोगों में जागरूकता नहीं है. इन्हीं सब के बीच बेंगलुरु में एक छात्र आदित्य के पेट डॉग जिमी की मृत्यु ब्लड की कमी की वजह से हो जाती है. समय पर ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पाई. आदित्य को इस बात से बहुत दुख हुआ और साथ में उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये एनिमल्स को जब भी आवश्यकता हो ब्लड उपलब्ध कराया जा सके. आदित्य अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. इन्होंने एक वेबसाइट बनाई bloodforpet.com, जिसमें लोग अपने पेट डॉग की ब्लड की आवश्यकता के अनुसार संपर्क कर सकते हैं. इन्होंने लोगों से अपने पेट डॉग से ब्लड डोनेट करवाने की भी मुहिम चलाई. लोग जुड़ते गए. बेंगलोर से शुरू हुई ये कहानी भारत के कई शहरों, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई जैसे शहरों में पहुंच गई. आदित्य ने हर शहर के लोगों का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया. इस प्रयास

0: आदित्य जो अभी स्वयं एक छात्र हैं, उन्होंने 500 डॉग्स के लिए ब्लड की व्यवस्था की है। आदित्य अपनी इस पहल के बारे में बताते हैं।
1: हाँ, मेरा नाम तो आदित्य है। मैं पहले से बैंगलोर में थे। मैं 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक डॉग था, उसका नाम जिमी था। वो मर गया क्योंकि उसका ब्लड ना आया टाइम पे, इसलिए हम सोचा मैं सोचा ये शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद एक वेबसाइट की शुरू किया, और उसके बाद वो ही थोड़ा बड़ा बड़ा हो लिया। और उसके बाद हम ही एक वेबसाइट से व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, और उधर से बहुत ज़्यादा डॉग्स को हेल्प मिलने का शुरू हुआ। और उसके बाद हम लाइक वी स्टार्टेड हेल्पिंग आवर डॉग ओनर्स एंड कनेक्टिंग देम विद अदर डॉग ओनर्स हु रिक्वायर्ड ब्लड। उधर से बहुत ज़्यादा डॉग्स को हेल्प मिला। मैं तो अभी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी में, एंड मैं मेरा सेकेंड ईयर डिग्री में है। और ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के बारे में, और हेल्प करने के लिए बहुत हाँ रेडी हूँ। इसीलिए मैं ये शुरू किया, क्योंकि कोई डॉग ने मरना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिला।
0: भारत में कई जगह पर ऐसे संस्थान हैं जो एनिमल्स के लिए ब्लड उपलब्ध कराते हैं। आदित्य कोई ब्लड बैंक नहीं चलाते हैं, वो बस एक माध्यम बन गए हैं कि लोगों के लिए सहारा हो गया है, क्योंकि अधिकांश लोग तो जान भी नहीं पाते हैं कि एनिमल के ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन के लिए कहाँ जाएं।
1: बिल्कुल, हमारा तो एक तो क्लियर है, हम तो ब्लड बैंक नहीं है, हम एक डॉग कम्युनिटी है। मैं वो कम्युनिटी को मदद करते कि कैसे वो कोई आता है मुझको ब्लड चाहिए बोलकर, मैं उसको दूसरे डॉग ओनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके साथ वही वो ब्लड डोनेशन का बात करते हैं और डॉक्टर के साथ जाते हैं और उधर करते हैं। ये तो पूरा नॉन प्रॉफिट है, वो लोग खुद आप उसके मर्जी से ही करते हैं। ये कोई भी ये स्टोरेज फैसिलिटी कुछ कुछ नहीं है अभी, और पूरा एक कम्युनिटी एफर्ट जैसा है।
0: अब एनिमल में ब्लड डोनेशन को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। एनिमल्स के भी ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह के। सबसे बड़ी बात इसमें ब्लड डोनेशन में ब्रीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक जर्मन शेफर्ड भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और वो ब्लड किसी भी डॉग को उसके ब्लड ग्रुप मैचिंग के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। छोटा डॉग भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और उसका वो ब्लड किसी बड़े डॉग को चढ़ाया जा सकता है। कमजोरी आना, ये सब भ्रांतियां हैं।
1: ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना। हम जैसे ह्यूमंस भी ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना ब्लड डोनेशन इधर से उधर तक। हाँ, वो क्या होता है, हम एक मिनट दो मिनट के लिए थोड़ा थक लाइक वी फील लिटिल टायर्ड फॉर लाइक 2 मिनट्स, पर उसके बाद हम फिर से ठीक हो जाते हैं ना। ऐसे ही होता है डॉग्स पे भी। और एक और बात है, डॉग्स में ब्लड ग्रुप कैसे ह्यूमंस में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव जैसे है, उस डॉग्स में भी ऐसी है डी ए नेगेटिव डी ए पॉजिटिव के नाम से। और उधर एक और एडवांटेज है, कोई भी डॉग डोनेट कर सकता है। ये नहीं है तो जर्मन शेपर्ड होगा तो जर्मन शेपर्ड की ही दे सकते हैं ब्लड, ऐसे नहीं है। एक पराया डॉग लोकल डॉग वो भी डोनेट कर सकते हैं जर्मन शेपर्ड के, और एक पोमरेनियन भी डोनेट कर सकते हैं जर्मन शेपर्ड के। वो ब्रीड का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, मैं बहुत बार सुन लिया है कि हमारा डॉग तो डॉलमेशन है, कैसे एक जर्मन शेपर्ड डोनेट कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं है। और एक और बात है, तो ये तो बहुत नोबल कॉज है ना, कोई डॉग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑफकोर्स फीवर वो सब हो और या प्रेग्नेंट हो तो डॉग ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, लेकिन ह्यूमंस में कैसे होते हैं ऐसे ही। लेकिन दूसरी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं डॉग्स को। थोड़ा ब्लड से ही बहुत रिकवरी होता है, टिक फीवर जैसा प्रॉब्लम्स हुआ तो थोड़ा ही ब्लड चाहिए, 200 mm या 100 mm ऐसे और ml। और ये बहुत कम होता है ब्लड, ह्यूमंस में हम ऑलमोस्ट 500 ml तक डोनेट करते हैं ब्लड, लेकिन डॉग्स में बहुत कम होता है, और कम से ही बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी होता है डॉग्स पे। तो ये मिसकंसेप्शंस बहुत है, कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा वेबसाइट में भी हम लिखा है ये ऐसे नहीं है, मतलब उसके बारे में, और हम इंटरनेट में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में।
0: आदित्य की पहल डॉग लवर्स के लिए एक वरदान है। 500 से अधिक डॉग्स को ये ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं। एक बार तो सिर्फ 5 मिनट में ब्लड उपलब्ध कराकर इन्होंने दिखा दिया, जिससे एक डॉग की जान बच सकी। आदित्य अपने अनुभव बताते हैं।
1: ऑफ कोर्स, तो हाँ, सो सिंस वी आर अ डॉग कम्युनिटी, वी हैव आई डोंट नो हाउ मेनी कितना यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेट किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 डॉग्स को हेल्प मिला है हमारा कम्युनिटी से, और हम थोड़ा एक्सपैंड भी हुआ है। सिर्फ बैंगलोर में शुरू हुआ था और उसके बाद में अभी दिल्ली में पढ़ रहे हूँ, इसीलिए वो दिल्ली का ग्रुप है, बॉम्बे का एक ग्रुप है, गुवाहाटी का है, भुवनेश्वर में है, बहुत ज्यादा इंडियन सिटीज में एक्सपैंड हुआ है ये ऑपरेशन। सिर्फ ये कम्युनिटी एफर्ट है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। सो डॉग ओनर्स वो ही ये ऑपरेशन को हेल्प करता है, कैसे है वो कनेक्ट करते हैं, वो ही हेल्प करते हैं दूसरी डॉग डॉग वो ही हेल्प करते हैं, हमारा तो सिर्फ उसको वो मैड करने का, लाइक दैट्स द आर ओनली जॉब। इट्स लाइक थैंक्स टू ऑल द डॉग ओनर्स हु हेल्प्ड अस टिल नाउ एंड वन ऑफ देम हु सम टाइम हेल्प ही करता है, दैट्स वन थिंग। एंड अनदर इज दैट बहुत ज्यादा टाइम ऐसा बहुत लाइक द कंडीशन बहुत खराब होता है, कैसे वो बिल्कुल almost it will be in unfortunately in the end stages and they would call us and वो बोलते हैं अभी क्या कर सकते हैं, हमारा बहुत ज्यादा problems, और हम भी बोलते हैं वो community है हमारा साथ है, लेकिन हम बहुत ज्यादा effort करेंगे, call करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन एक बार ऐसे instance हुआ था, वो बोल रहे थे 3 घंटे में चाहिए blood, बहुत dog का तबीयत बहुत ठीक नहीं है, अभी टिक फीवर हुआ है, बहुत सीरियस था, अभी ब्लड चाहिए हम, ये बैंगलोर का था 1 साल पहले, और हम भी बोला हम ट्राई कर सकते हैं, कितना मदद कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन गारंटी, लेकिन लाइक लिटरली इट वाज अ मिरेकल दैट हम एक मैसेज डाल दिया प्लीज प्लीज करके मैं, और ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 रेस्पॉन्स हमको आया वो डॉग को हेल्प करने के लिए, लाइक इन 500 टाइम्स, एंड दैट्स व्हेन हमको भी फील हुआ या दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिफरेंस, एंड वी सॉ दैट लाइक इट ओनर्स वर विलिंग टू हेल्प इन सच अ शॉर्ट टाइम, एंड इन दिस लाइक इतना फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, बहुत ज्यादा लोग पढ़ ही नहीं थे, लेकिन उस टाइम लाइक टू मेनी पीपल हेल्प्ड आउट, दे रेड द मैसेज, दे आर विलिंग टू हेल्प आउट, एंड वो डॉग को मिला ब्लड, और अभी वो डॉग ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा डॉग था, सिर्फ 8 मंथ्स का डॉग है, लाइक इट वॉजेंट अ वेरी ओल्ड डॉग, सो लाइक इतना ज्यादा मिला, और इट वॉज वन ऑफ इट वॉज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हेन वी फेल्ट वी आर लाइक नॉट जस्ट अस, द एंटायर कम्युनिटी इज पुटिंग एन एफर्ट एंड वी कैन सी सच वंडरफुल रिजल्ट।
0: पशु बेजुबान होते हैं, आप पर निर्भर होते हैं, उनकी बीमारी का भी दायित्व हमारा है, ऐसे में आदित्य की ये पहल वाकई सराहनीय है। लखनऊ से फैसल फरीद।
2: SBS हिंदी पर मैं हूं नबील, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में बने रहने के लिए। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं तो मैं बस आपको एक गाने के साथ छोड़ जाऊंगा, और इस वादे के साथ कि एक और शाम फिर से मिलेंगे एक नए शो में, और बने रहिए SBS हिंदी के साथ।

0: अपनी जान गवा बैठे। सऊदी अरब बेस्ड एक न्यूज वेबसाइट मुजब एक वीडियो चे वेख्या जा सकता है कि जहाज एक सड़क दे नाल टक्कर खान तो बाद रेड़दा होया तबाह हो गया। अग फड़क उठी, अग दी लपेट चे आम राई भी आए जो मोटरसाइकिल ते सवार सड़क तो लंघ रहे सन। फौज दे इतलावां देण वाले महकमे ISPR ने जहाज दे तबाह होण समेत दो पायलट्स ते जानो जान दी तस्दीक करदिआं आख्या है कि जहाज दी तबाही किस कारण होई, एदी वजह जानण लई एक इनक्वायरी कमेटी बिठाती है। लो जी, लैंदे पंजाब तों इस हफ्ते लई इन्ना ही, आउंदे हफ्ते कुछ होर खबरां दा निचोड़ लै के मसूद मल्ली SBS पंजाबी दे सब सुनण वालिआं दे रूबरू हाजिर हाओ।
1: जी हाजरीन, SBS पंजाबी वालों दिता जा रहा एक खास तोहफा। पंजाबी संगीत के सुपरस्टार करण औजला अपने पी पॉप कल्चर टूर तहत इस अगस्त ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। इस मौके SBS पंजाबी अपने स्रोतियों लिए खास गिववे लैके आया है। असी दे रहे हाँ 4 मुफ्त पास, मेलबर्न के 18 अगस्त वाले शो लिए 2 पास, सिडनी के 21 अगस्त वाले शो लिए भी 2 पास। तो दोस्तों, जे तुसीं करन औजला नूं लाइव देखना चाहते हो तो SBS पंजाबी दे प्लेटफॉर्मां उत्ते अपनी नज़र बनाई रखो। मुकाबले विच हिस्सा लैण अते जित्तण दा मौका हथों ना जाण देना। जी दोस्तों, तुसीं जरूर देखना चाहोगे करन औजला नूं आमणे सामणे। तो ये किवें देख सकते हो, डबल पासिस किवें जित सकते हैगे हो, इहदे वास्ते जल्द ही असीं अपने सोशल मीडिया उत्ते जानकारी पावांगे, कुछ क्विज़ वगैरह पावांगे, तो तुसी विन कर सकते हो, कोई ड्रॉ करांगे तो तुसी उसनू विन कर सकोगे। दोस्तों जी, वेला हो गया एक ब्रेक का, तो मैं दसना चाहांगा कि ब्रेक तो बाद इमीजिएटली बाद थानू एक बहुत ही वधिया मुलाकात सुनानी है। वह हैगी जी फीफा नाल रिलेटिड, पर पंजाबी मुंडा, कहिंदे पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी छा गए हुए, पंजाबी मुंडा फीफा दे विच खेड रहा है। यह हैगा जी सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड तो। तो इस गलबात का असी अज पहला भाग तुम सुनावे ब्रेक तो बाद, तो इसका दूजा भाग असी कल के प्रोग्राम सुनावे, वह भी जरूर सुनियो। तो मैं तुम्हें याद करना चाहाँगा कि जो प्रोग्राम हैगा पंजाबी का, हुण तुसी दिन भी 2 बार सुन सकते हो, 4 to 5 यह लाइव पेश हुंदा जी, जिहड़ी साडी ऐप हैगी SBS ऑडियो उहदे उत्ते जाके सुन सकते हो। तो इसे का मुड़ प्रसारण रिपीट हुंदा राती 9 to 10 SBS 2 दे उत्ते, तो वह भी जरूर सुनिया करो। दोस्तों लैंदे आ ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद जल्द ही मिलते हैं जी सरप्रीत सिंह दे नाल।
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: sbs.com.au/punjabi nu apna online homepage banao. Taziyan khabran, tarant maam